शुभ सवेरा, नमस्कार। ...90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। आज आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज गुरुवार है। विक्रम संवत 2083 के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि और शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। इस समय 7:04 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आज के इस पावन पवित्र दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की इस प्रातःकालीन प्रसारण सभा में हम कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले कार्यक्रमों की जानकारी आपको देना चाहते हैं, लेकिन उसके भी पहले आज के दिन की एक विशेष बात।

श्रोताओं, आप जानते ही हैं कि 16 जुलाई 2026 की तारीख है आज। आज के दिन से भगवान जगन्नाथ की विश्व विख्यात रथ यात्रा आरंभ हो रही है। ये भारत के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में से एक है। ओडिशा के पुरी में लाखों श्रद्धालु और दुनिया भर से आए भक्त इसमें भाग लेते हैं। रथ यात्रा की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। वर्तमान पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने अपने समय में करवाया था। तभी से इस यात्रा का स्वरूप भव्य हो गया है और इस भव्य रूप में ये आयोजित हो रही है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा वर्ष में एक बार अपने मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर, जिसे उनकी मौसी का घर भी कहा जाता है, वहां जाते हैं। 9 दिन वहां निवास करने के बाद वो दोबारा श्री मंदिर लौटते हैं। ये वापसी यात्रा बहुधा यात्रा कहलाती है। ये उत्सव समरसता और समानता का संदेश देता है। भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ खींचने का सौभाग्य हर जाति, वर्ग और देश के लोगों को समान रूप से मिलता है। ये ओडिशा की लोक कला, संगीत, नृत्य, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन है। भगवान जगन्नाथ को जगत के नाथ अर्थात समस्त मानवता के भगवान के रूप में पूजा जाता है। श्रोताओं, आपको हम बता दें कि इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए हर वर्ष नए विशाल लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं और ये लकड़ी होती है नीम की लकड़ी। और विशेष बात ये कि इस रथ में किसी भी तरह की कील का प्रयोग नहीं किया जाता है। पुरी के गणपति महाराज स्वर्ण झाड़ू से रथों को प्रतीकात्मक रूप से साफ करते हैं। इस अनुष्ठान को छेरा पहरा कहा जाता है, जो ये संदेश देता है कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं। हजारों श्रद्धालु मोटी रस्सियों से रथों को खींचते हैं। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन, संकीर्तन, ओडिशी नृत्य, लोक संगीत, प्रसाद वितरण और धार्मिक प्रवचन होते हैं। 9 दिन बाद बहुधा यात्रा और अंत में नीलाद्री बीजे के साथ भगवान दोबारा श्री मंदिर में विराजते हैं। विशेष बात यह है कि तीनों रथों के अलग अलग नाम हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को कहा जाता है नंदी घोष, बलभद्र के रथ का नाम है तालध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम है दर्पदलन या देवदलन। रथ यात्रा केवल एक आध्यात्मिक उत्सव नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये प्रेम, सेवा, समानता और मानवता का महापर्व है। इसका संदेश है कि ईश्वर किसी एक स्थान या वर्ग तक सीमित नहीं है, वो स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और सबको समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। तो आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि और फिर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। वतन का राग ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज हम बात करेंगे अरुणा आसफ अली की। बाल सभा कार्यक्रम में आज बच्चे सुनेंगे भाषा की मर्यादा पर कार्यक्रम। प्रसारण का समय रहेगा 8:30। सुबह 9 बजे हमारी सेना हमारा गर्व इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के तीसरे भाग पर चर्चा होगी। सुबह 9:30 हमारा विशेष कार्यक्रम होगा। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे शिव भाई गुप्ता का निमाड़ी गायन। देश के संस्थान कार्यक्रम होगा सुबह 10 बजे। इसमें आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। आज़ाद हिंद कार्यक्रम में सुबह 10:30 चर्चा होगी महेंद्रनाथ डे की। नगर की सामाजिक साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 11 बजे। और 11:30 सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार विविध कार्यक्रम आपके लिए लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक भेजेंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद आज की पहली प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ परिवार में रहता था, जहां आर्थिक संकट के दिन चलना सामान्य सी बात थी। लड़के के मन में बड़े बड़े सपने थे, वो एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। लड़का रोजाना पुस्तकालय जाता था और किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का संकल्प बनाया था। उसने एक छोटी सी दुकान में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कमाई बचाने लगा। वो दिन रात मेहनत करता, धैर्य रखता और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता। लड़के के माता पिता उसके सामर्थ्यता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। वो जहाँ काम करता था, उसने अपने बचत के पैसे से वहीं व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़के की कठिनाइयों और संघर्षों भरी यात्रा उसे ये सिखाती रही कि सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना होता है। धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड़का अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहा। इस कहानी से हमें ये अद्भुत संदेश प्राप्त होता है कि सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, हमें अपने सपनों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत और समर्पण दिखाना चाहिए। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती है।
1: जीवन सौरभ।
3: न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की।
4: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गजल गायक। 90.8 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 166 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं मरुद्गण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
1: तन्नु वोचाम रभसाय जन्मने पूर्वं महित्वं वृषभस्य केतवे एधेव यामन मरुतस्तु विश्वनो युधेव शक्रास्त विषाणिकर्तन। वर्षणशील मेघों को विभाजित करने वाले हे वीर मरुद्गणों, हम आपके पुरातन महत्व का यशोगान करते हैं। हे गर्जनशील मरुतों, योद्धाओं तथा धधकती हुई अग्नि के समान चढ़ाई करते हुए शत्रुओं का संहार करें। नित्यम न सूनुम मधु बिभ्रत उप क्रीडन्ति क्रीडा विदथेषु घृष्वयः। नक्षन्ति रुद्रा अवसा नमस्विनम नमूर्धन्ति स्वतवसो हविष्कृतम्। युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाले बालकों के समान मधुर क्रीड़ा करने वाले रुद्र पुत्र मरुद्गण स्तोताओं की उसी तरह रक्षा करते हैं जैसे पिता पुत्र की। ये मरुद्गण हविदाता याजक को कष्ट नहीं होने देते। यस्मा उमासो अमृता अरासत रायस्पोषम च हविषा ददाशुषे उक्षन्त्यस्मै मरुतो हिता इव पुरु रजांसि पयसा मयो भुवः। अविनाशी वीर मरुतों ने अपनी संरक्षण शक्ति से युक्त होकर जिस हविदाता को धन संपदा से परिपुष्ट किया, उसके लिए कल्याणकारी मित्रों के समान सुखदायक होकर उपजाऊ भूमि को प्रचुर जल से सींचते हैं। आये रजांसी तविशी भिरव्यत प्रव एवासह स्वयतासो अर्ध्रजन भयन्ते विश्वा भुवनानि हर्म्या चित्रो वो यामह प्रयतास्वृष्टिषु। हे मरुद्गणों, आप गतिशील वीर अपनी शक्तियों से सभी का संरक्षण करते हैं। आपने ही अनुशासन में रहने वाले आप जब तीव्र गति से दौड़ते हुए अपने शस्त्रों को चलाते हैं, तब सारे लोक बड़े बड़े राजभवन कांप उठते हैं। आपकी ये हलचलें वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। यत् त्वेषायामा नदयन्त पर्वतान् दिवो वा पृष्ठम् नर्या अचुच्यवुः विश्वो वो अजमन् भयते वनस्पति रथीयन्तीव प्र जीहीत ओषधि। हे मरुद्गणों, तीव्र गति से हमला करने वाले जब आप पहाड़ों को अपनी शब्द ध्वनि से गुंजित करते हैं तथा जन कल्याण के इच्छुक आप अंतरिक्ष के पृष्ठ भाग से गुजरते हैं, तो उस समय आपकी इस चढ़ाई से सभी वृक्ष भयभीत हो जाते हैं और समस्त औषधियां भी रथ पर आरूढ़ महिलाओं के समान विचलित हो जाती हैं। यूयम न उग्रा मरुतः सुचेतुना रिष्टग्रामाः सुमतिम पिपर्तन यत्रा वो दिद्यु द्रदति क्रिविर्दति ऋणाति पश्वः सुधितेव बर्हणा। हे मरुतो, अपने सबल हाथों से तीक्ष्ण हथियारों को धारण किए हुए आप शत्रु सेना का संहार कर देते हैं तथा शत्रुओं के हिंसक पशुओं का भी वध कर देते हैं। उस समय हे पराक्रमी वीरों, आप अपनी श्रेष्ठ आंतरिक भावनाओं से हमें श्रेष्ठ विचार प्रेरणा

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम। नमस्कार, भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, आस्था, उल्लास और समर्पण का अनुपम पर्व श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आज से आरंभ हो रहा है। ये शुभ अवसर है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और प्रेम, समानता तथा करुणा का संदेश देते हैं। इसी पावन वेला में हम भी अपने मन के रथ को श्रद्धा के मार्ग पर अग्रसर करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मधुर भक्ति में डूबने जा रहे हैं। आइए, बांके बिहारी मुरलीधर, द्वारिकाधीश जगन्नाथ प्रभु को समर्पित भजनों की इस संगीतमय यात्रा का शुभारंभ करें।

भगवान जगन्नाथ अर्थात समस्त जगत के स्वामी, उनके चरणों में न कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई अपना है न पराया है। यही भाव भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सार है। आइए प्रेम और समर्पण के साथ सुनते हैं अगला भजन।

श्रोताओं, कहा जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है वहां मन की व्याकुलता स्वयं शांत होने लगती है। उनकी बांसुरी केवल स्वर नहीं जगाती, वो जन जन की आत्मा को स्पर्श करती है।

श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें हर परिस्थिति में कर्म करना और धर्म का साथ निभाना सिखाता है। उनकी हर लीला जीवन का एक नया संदेश देती है। इस संदेश को सुनने की आवश्यकता है, इसे गुनना आवश्यक है।

श्रोताओं, भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का ये पवित्र दिन है, जबकि हर प्रार्थना, हर भजन और हर स्मरण प्रभु तक पहुंचने का एक सुंदर माध्यम बन जाता है। आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, जहां हर मन श्री कृष्ण के जय जयकार में डूबा हुआ है।

तो श्रोताओं, आज भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में हमने स्तुति की भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण की। ये रथ यात्रा हमें बताती है कि ईश्वर मंदिरों तक सीमित नहीं है, वो हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास है, जहाँ सेवा का भाव है। आज के दिन हमारी यही कामना कि भगवान श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और मंगल का प्रकाश भर दे। रथ यात्रा का ये पावन पर्व हम सभी के जीवन को प्रेम, सेवा और सद्भाव की दिशा देता रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। वो जो जोखिम उठाने के लिए पर्याप्त रूप से साहसी नहीं है, वो जीवन में कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। अप्रतिम साहस से भरा हुआ ये कथन था 1942 की रानी झांसी कही जाने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न अरुणा आसफ अली का। इसी साहस से भरी अरुणा आसफ अली 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारत का झंडा फहराती हैं। देश भर के युवाओं में जोश भर जाता है, करो या मरो का नारा गूंज उठता है और शुरू होता है ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन। वो आंदोलन जिसने अंततः देश को आजादी का तोहफा दिया। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को तत्कालीन ब्रिटिश पंजाब यानी आज के हरियाणा के कालका नामक स्थान में एक सम्मानित बंगाली परिवार में हुआ था। नाम रखा गया अरुणा गांगुली। उनके पिता का नाम उपेंद्रनाथ गांगुली और माता का नाम अंबालिका देवी था। पिता उपेंद्रनाथ गांगुली प्रखर विचारों के पत्रकार थे। अरुणा आसफ अली ने लाहौर और नैनीताल के पब्लिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और पढ़ाई लिखाई में तन्मय रहने वाली बालिका थी। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद अरुणा जी गोखले मेमोरियल स्कूल कोलकाता में अध्यापिका के तौर पर काम करने लगी। इसी बीच उनकी मुलाकात दिल्ली के आसफ अली से हुई। आसफ अली एक सुविख्यात वकील और कांग्रेस के नेता थे। ये वही आसफ अली हैं जिन्होंने असेंबली में बम फोड़ने के बाद गिरफ्तार हुए अमर शहीद सरदार भगत सिंह का मुकदमा लड़ा था। अरुणा आसफ अली ने माता पिता के विरोध के बावजूद सन 1928 में 19 वर्ष की आयु में आसफ अली से शादी की और अरुणा गांगुली से अरुणा आसफ अली बन गईं। इस विवाह ने उनके जीवन की दिशा बदलकर रख दी। वे राजनीति में रुचि लेने लगीं। 1930 के नमक सत्याग्रह के समय ही वो अखिल भारतीय स्तर की नेत्री बन गई थीं। वो जुलूसों की अगुवाई करतीं, सभाओं में जोशीले भाषण देतीं। उनकी इन गतिविधियों को देखकर दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने उन्हें चेतावनी भी दी। पर अरुणा जी कब डरने वाली थीं? वो आगे बढ़ती रहीं। परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। गांधी इरविन समझौते के बाद वो जेल से छूटी तो सन 1932 में फिर से सत्याग्रह करके जेल चली गईं। पहली बार भी उनकी रिहाई अन्य नेताओं के साथ वैसे ही नहीं हो गई थी, बल्कि जनमत के दबाव में सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा था। और इस बार भी सजा के साथ जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर पुलिस उनके घर का सारा कीमती सामान उठाकर ले गई। तिहाड़ जेल में कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। तब जेल अधिकारियों ने उनकी मांगे तो मानी, पर उन्हें दिल्ली जेल से हटाकर अंबाला की महिला जेल में भेज दिया गया और वहां उन्हें अकेले ही रखा गया। देश की आजादी उनका एकमात्र स्वप्न था, जिसे पूरा करने हेतु वो कृत संकल्प थी।

आसफ अली ने सन 1930 और 1932 के साथ ही सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय भी जेल यात्रा की। और अब साल आया 1942 का। अंग्रेजों का अत्याचार भारतीयों के भीतर ज्वालामुखी बनकर उबल रहा था और उधर द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। इसी समय भारत से सहयोग की उम्मीद लिए क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन इस मिशन द्वारा दिखाए गए गुलाबी सपनों को गांधी जी ने खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों से सभी नेताओं को धक्का पहुंचा और गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी और देशवासियों को मंत्र दिया, करो या मरो। इस अधिवेशन में अरुणा आसफ अली भी अपने पति के साथ शामिल हुई थीं। 8 अगस्त को रात 10:30 बजे ये ऐतिहासिक अधिवेशन समाप्त हुआ। सभी लोग ग्वालिया टैंक से अपने अपने ठिकानों पर पहुंचे तो लगभग आधी रात व्यतीत हो चुकी थी। चारपाइयों पर लेटते लेटते लगभग रात के 2 बज गए। ये अफवाह तो कई दिनों से उड़ रही थी कि यदि कोई ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया गया जो सरकार को अप्रिय हुआ तो सभी नेता शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन किसी को ये अनुमान नहीं था कि सरकार इतनी जल्दी गिरफ्तारियां करेगी। अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे थे कि बिड़ला हाउस को, जिसमें गांधी जी ठहरे थे, पुलिस ने घेर लिया। दरवाजा खोलने में जरा सी देर हुई तो पुलिस के सिपाही दीवारें कूद फांद कर अंदर पहुंच गए और महात्मा गांधी के निवास स्थान पर घेरा डाल दिया। तब तक गांधी जी उठकर बकरी के दूध और संतरे के रस का नाश्ता कर चुके थे। इतने में ही पुलिस पहुंच गई। गांधी जी तो जैसे तैयार ही थे। उन्होंने वैष्णव जन तो तीणे कहिए तथा अपने कुछ अन्य प्रिय भजन सुने और फिर पुलिस के साथ चल दिए। इसके बाद गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया। करीब करीब आंदोलन का पूरा नेतृत्व ही जेल में चला गया। ऐसे समय में अरुणा आसफ अली जैसे साहसी देशभक्तों ने आंदोलन की कमान संभाली। 9 अगस्त सन 1942 को अरुणा आसफ अली ने अंग्रेजों के सभी इंतजाम को धता बताते हुए मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहरा दिया। इस तरह तमाम नेताओं की गिरफ्तारियों के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। पूरे देश में इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। कोई स्थिर नेतृत्व न होने के बावजूद देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ कड़े विरोध प्रदर्शन हुए। अरुणा आसफ अली ने जयप्रकाश नारायण और डॉ राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं के साथ मिलकर इस आंदोलन में एक नया जोश भर दिया। वो भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गईं। उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश जारी कर दिया गया था। सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की, लेकिन बात बनी नहीं। अरुणा आसफ अली का मानना था कि जेल के बाहर रहकर ही इस आंदोलन को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, अतः गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भूमिगत हो गईं और मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आदि स्थानों में घूम घूम कर उन्होंने लोगों में नव जागृति लाने का प्रयास किया। इस बीच अरुणा आसफ अली की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांधी जी ने उन्हें पत्र लिखकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वो भूमिगत ही रहीं और आंदोलन को हवा देती रहीं। मुंबई के जिस ग्वालिया टैंक मैदान में उन्होंने झंडा फहराया था, उसी मैदान को आज हम गौरव के साथ अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं।

1942 से 1946 तक अरुणा आसफ अली भूमिगत रहकर अपने काम में जुटी रहीं। उनकी संपत्ति को जब्त करके बेच दिया गया, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। 26 जनवरी 1946 को जब उनकी गिरफ्तारी का वारंट रद्द हुआ, तब वो भूमिगत जीवन से बाहर आईं। अंततः 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ। अनगिनत क्रांतिकारियों के साथ साथ अरुणा जी का स्वप्न भी साकार हुआ। 1947 में वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुईं। 1948 में वो सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुईं और 1950 में लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी बनाकर वो मजदूर आंदोलन में जी जान से जुट गईं। अरुणा आसफ अली ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सन 1958 में वो दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर चुनी गईं। दिल्ली के विकास, सफाई और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में उन्होंने अतुलनीय कार्य किए। अरुणा आसफ अली इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी, ऑल इंडिया पीस काउंसलिंग तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जैसी संस्थाओं के लिए भी बड़ी लगन, निष्ठा, ईमानदारी और सक्रियता से कार्य किया। अरुणा आसफ अली एक पत्रकार और लेखिका के तौर पर भी याद की जाती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ अ नेशन, प्राइवेट फेस ऑफ पब्लिक पर्सन, रिसर्च ऑफ इंडियन वुमेन आदि। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इनकलाब नाम की मासिक पत्रिका में काम भी किया। मार्च 1944 में इनकलाब पत्र में उन्होंने लिखा था कि आजादी की लड़ाई के लिए हिंसा अहिंसा की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। क्रांति का ये समय बहस में खोने का नहीं है। मैं चाहती हूं कि इस समय देश का हर नागरिक अपने ढंग से क्रांति का सिपाही बने। उनके व्यक्तित्व पर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं के विचारों का गहरा प्रभाव था। जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर उन्होंने दैनिक समाचार पत्र पैट्रियाट और साप्ताहिक समाचार पत्र लिंक का प्रकाशन भी किया। इन पत्रों में समय समय पर प्रकाशित महत्वपूर्ण संपादकीय लेखों, इनमें और अन्य लिखे उनके विचारपूर्ण लेखों तथा उनके भाषणों के कई संग्रह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हैं। पहले आजादी के लिए और फिर देश निर्माण और सामाजिक पिछड़ेपन से मुक्ति के लिए अपने ढंग से निरंतर लड़ाई लड़ने वाली अरुणा आसफ अली ने 29 जुलाई सन 1996 को 87 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। देश और समाज के लिए किए उनके कार्यों को देखते हुए सन 1975 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार, 1991 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1992 में पद्म विभूषण और सन 1997 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। स्वाधीनता संग्राम में उनकी साहसी भूमिगत मोर्चाबंदी के लिए उन्हें 1942 की रानी झांसी की संज्ञा दी गई। साथ ही आजाद भारत ने उन्हें सम्मान देते हुए बहुत प्यार से ग्रैंड ओल्ड लेडी कहकर भी पुकारा। ऐसी महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, बच्चों की महफिल तैयार है जगमगाती हुई, खिलखिलाती हुई और गुनगुनाती हुई। तो चलिए, एक छोटे से अंतराल के बाद आपको हम लिए चलते हैं उनके बीच और सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट रेडियो आज़ाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है भाषा की मर्यादा।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बातों की बात की। आप सोच रहे होंगे ना ये कौन सी बात हुई, लेकिन यही बात है बच्चों कि हम बात कैसे करते हैं, बात करने का हमारा तरीका क्या है, बात करते करते कहीं हम ये तो नहीं भूल जाते कि हम इतना कैजुअल हो गए हैं कि किसी से कुछ भी बोले दे रहे हैं, क्या हम अपनी भाषा में बुरे शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या हमने अपनी बोली में पूरी मर्यादा रखी हुई है, या हम कुछ भी कहे जा रहे हैं। तो फिर अब हम आपको आज इसी बारे में बताने वाले हैं कि भाषा की मर्यादा क्या होती है ना। एक बहुत अच्छा दोहा है जो मुझे बड़ा पसंद भी है, और वो दोहा है रहमन जिहवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही, जूत खात कपाल। है ना, कितनी बड़ी बात है। रहीम जी कहते हैं कि जीभ बड़ी पागल है, या ये कह लीजिए कि बावली है, जो बिना सोचे समझे स्वर्ग और पाताल तक की उल्टी सीधी बातें कह जाती है। और खास बात ये है कि ये जीभ तो बिना विचारे बोलकर तुरंत मुंह के अंदर छुपकर बैठ जाती है, लेकिन इसके द्वारा कहे गए जो कड़वे या गलत शब्द हैं उनके कारण मार किसको पड़ती है, हमारे सिर को, है ना। मतलब कहे कोई और भोगे कोई, कह रही है जीभ, भोग रहा है सिर, तो फिर तो गलत बात हो गई ना बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि ये जीभ जो है इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करिए। एक और बात है, जो आपके शब्दों के बाण होते हैं ना, वो ज्यादा तेजी से घायल करते हैं किसी और चीज से, तो इसलिए हमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक और बात कहते हैं वो ये कि कही गई बात कभी वापस नहीं लौटती। मैं आपको इतनी सारी छोटी छोटी कहावतें, इतनी सारी बातें आज आपको बता दूंगी ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए कि हमें जब भी बात करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये बात करने के लिए मुझे कहाँ से दिमाग में आया, तो कहानी बड़ी सिंपल है। मैं आप जैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं खेल रहे होते हैं, कभी मंदिर के मैदान में, कभी कॉलोनी के पार्क में, कभी किसी के मोहल्ले में, अगर मैं जाती हूँ किसी से मिलने तो वहाँ जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत मिलती हूँ ये आपको पता है, तो बस जब मुझे ऐसे बच्चे दिख जाते हैं और वो कुछ ऐसी बात कह देते हैं तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे बाल सभा में आप लोगों से ये बात करनी है। तो हुआ ये कि मैं अपनी कॉलोनी के पार्क में बैठी हुई थी, दो बच्चे खेल रहे थे, हालांकि टीम उनकी बहुत बड़ी थी, 10-12 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दो बच्चों को मैंने देखा जो खेलते खेलते किसी बात पे झगड़ पड़े। तो ठीक है, बच्चों में झगड़ा होता ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो झगड़े बहुत जल्दी से सुलझ भी जाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े भोले भाले भी होते हैं ना। आप सब आज लड़े कल दोस्ती, तो ये चीज़ बहुत अच्छी भी है। अब लेकिन क्या हुआ, उसमें से एक बच्चा बोला कि तुम पागल हो क्या, तो दूसरा बच्चा बोला कि तुमने मुझे पागल क्यों कहा। अब पहले बच्चे के पास कोई जवाब ही नहीं था कि पागल क्यों कहा, उसने कहा कह दिया तो कह दिया। वो बच्चा जिद पे अड़ गया, उसने खेलने से मना कर दिया ये कह के कि नहीं, ऐसे कैसे कह दिया तो कह दिया। मेरी माँ कहती हैं कि किसी को भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी जो गलत हो। मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे लड़ रहे हो, पर मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कही जो तुमको बुरी लगे, तुमने मुझे पागल क्यों कहा। और आप भी जानते हैं बच्चों की कितनी बार हम इस शब्द का दिन भर में इस्तेमाल कर देते हैं, कभी स्कूल में, कभी लंच टाइम में, कभी शाम को बच्चों के साथ खेलते वक्त। अब आप सोचिए कि क्या ये कहना सही है, मतलब दोनों ही बच्चे हैं, वो बच्चा कह रहा है अरे कह दिया तो कह दिया, चल मैं तेरी दोस्ती हूँ, उसने कहा नहीं। पहले आप ये बोलो कि आज के बाद इस भाषा का, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब आप देखिए कि वो बच्चा अपनी जगह कितना सही है। वो न सिर्फ आपकी दोस्ती के लालच में वो किसी गलत बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है दोस्ती, सारी चीजें, खेलना सब साइड में है। पहले ये बताओ कि तुमने जो आज बात कही है वो कल कहोगे? वो कह रहा है अरे यार ये तो मुंह से निकल जाता है। अब देखिए दूसरी बात में ही क्या निकल गया, यार। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप में भाषा की मर्यादा नहीं है। फिर उस बच्चे ने टोक दिया कि देखो अभी तुमसे पागल कहने को रोका, अभी तुम बातों बातों में यार पे आ गए। तो बोला कि नहीं, बात अच्छे से करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी तुमसे दोस्ती हो जाऊंगा, मैं अभी तुमसे गले मिल लूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर अंत में बच्चों मुझे उस लड़ाई के बीच में पड़ना पड़ा। मैंने फिर दोनों बच्चों को समझाया, मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की दोस्ती हो जाओ। लेकिन वो बच्चा जो कह रहा है कि आज के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, तो नहीं करना। तो वो बच्चा जानते हैं मुझसे क्या बोला? वो बच्चा मुझसे बोला, आंटी मैंने कोई मारा थोड़ी है जो ये इतना नाराज हो रहा है। अब आप सोचिए कि भाषा की, बोली की मर्यादा उस बच्चे के लिए मायने ही नहीं रखती जिसने ये कहा कि मैंने तुमको मारा थोड़ी है जो तुम इतना बुरा मान रहे हो। ये सब तो चलता है। नहीं चलता बच्चों, नहीं चलता, बल्कि मैं ये कहूंगी कि नहीं चलना चाहिए। मेरे संगत में जो जो बच्चे आते हैं, मैं हर एक को एक ही बात सिखाती हूँ कि सबसे पहले आपका इम्प्रेशन होता है आप खुद, उसके बाद जैसे ही आप अपने शब्दों से कुछ अच्छी बात बोलते हो आपका इम्प्रेशन दोगुना हो जाता है, और जैसे ही आपने कुछ खराब बात की आपका इम्प्रेशन आधा रह जाता है। समझ रहे हैं आप बात? अगर आपको एक प्रभावशाली बच्चा बनना है, चाहे वो क्लास हो, स्कूल हो, आपका कोई स्कूल का ग्राउंड हो, या फिर कोई ऐसी प्रतियोगिता हो, अगर आप बात बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना बच्चों, तो आपका प्रभाव दोगुना हो जाएगा। तो बच्चा बोला कि आंटी आप इतनी देर से मुझे समझाए जा रही हैं, आप इसे क्यों नहीं समझा रही हैं? मैंने कहा बेटा समझा तो मैं उसको भी रही हूँ, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि तुम्हें दोबारा गलती नहीं करनी है। तो बस ना तुम ये गलती करोगे ना बात बिगड़ेगी, क्योंकि तुम अगर ये कह रहे हो कि मैंने मारा थोड़ी, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात मारना है, उसके पहले की कोई भी गलतियां तुम्हारे लिए गलतियां हैं ही नहीं, है ना। तब उसको समझ में आया कि शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, तब उसने कहा सॉरी, तब उसने उस बच्चे से भी सॉरी कहा और उन दोनों बच्चों की दोस्ती हो गई। तो चलिए भाई, हमारी तो बात यहाँ शुरू हो गई है कि हमने बच्चों को समझाया, बच्चे मान गए। लेकिन आज का ये जो विषय है, आपको पता है ना, ये आपकी किताब में भी बहुत बार आता होगा, है ना, बहुत सारी जब आप हिंदी की कहानियाँ पढ़ते हैं उसमें भी ये बात आती है। इनफैक्ट मैंने आपको एक बार तोते की कहानी सुनाई थी इसी बाल सभा में, वो भी इसी बात पर थी कि एक तोता राजा को बहुत प्रिय था, याद आ गई होगी आपको सुनते सुनते ना, और एक तोता राजा को बिल्कुल अप्रिय था। दोनों में अंतर यह था, दिखने में दोनों एक जैसे थे, पर दोनों तोते जो थे उनकी भाषा में बहुत अंतर था। एक बहुत मीठा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता था, और वहीं दूसरा बहुत गंदा, बहुत तेज, बहुत चिल्लाकर, बहुत चीखकर, और बहुत एनोइंग था। तो अब आप सोचिए बच्चों कि ये सब चीजें कितना महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। हाँ, अभी मैं एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ आपको। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, और ये कविता आपको समझ में आएगी क्योंकि मुझे लगता है कि इसका छोटा छोटा सा जो अर्थ है वो हमारी बात को और बल देता है। तो कविता यहां से शुरू होती है कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। इस बात का मतलब समझे आप कि भले ये शक्ति विज्ञान में है जिससे अमावस की रात भी पूर्णिमा जैसी बन जाती है, लेकिन विश्व पर आज क्यों दिन में ही अमावस जैसा अंधेरा छा जाता है। कितना बड़ा प्रश्न कर रहे हैं कवि। आगे लिखते हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। कितनी सुंदर बात है। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। अब अगर हम अपनी बात को इस बात से करेंगे तो ये मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन तिमिर का मतलब बच्चों अंधेरा होता है, और जो दीप स्नेह के दीप की बात जलाने की कर रहे हैं कवि, वो यही है कि भले ही हम साइंस ने विज्ञान ने जो बल्ब जला दिए हैं, जितना आविष्कार हुए हैं, वो बल्ब जो जल रहे हैं, अगर हम उन्हें बुझा दें तो हमें जो विद्युत के बल्ब हैं उन्हें बुझा कर असली बल्ब यानी हमारे भीतर की असली रोशनी को, स्नेह की रोशनी को प्रकाशित करना है, प्रकाशमान बनाना है संसार को, है ना। बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिकल लाइट हैं उनसे आपको असली रास्ता असली पथ नहीं मिलेगा, बल्कि असली पथ आपको किससे मिलेगा, उस दिए से जो स्नेह का दीपक है। जब किसी अनजान आदमी से मुस्कुराकर हम गुड मॉर्निंग कहते हैं या नमस्ते कहते हैं या प्रणाम कहते हैं, तब स्नेह का दीपक दोनों तरफ चलता है, है ना। आगे कवि कहते हैं कि मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। आगे लिखते हैं कि दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब एक दीपक भी अगर रह गया स्नेह का प्रेम का, तो आप यकीन करिए कि जो रात है उससे सवेरा वापस लौटेगा, मतलब अंधेरे की रात स्नेह के दीपकों से काली रात खत्म हो जाती है, और जो स्नेह का सूर्य है, स्नेह का दीप है, उससे सारा तिमिर सारा अंधकार भाग जाता है। अब आप ये देखिए कि इस तरह की कविताएं, इस तरीके की कहानियां जो हिंदी साहित्य में हमारे पास बहुत हम लोग समृद्ध हैं, अगर हम पढ़ें ना बच्चों तो हमारे शब्द भी बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर कभी आप सोच के देखिए कि अभी आपने ये कविता सुनी है ना, अगर आप ये कविता में से दो शब्द बहुत अच्छे चुनना हो आपको, तो आप क्या चुनेंगे। कभी आप अपने घर में तिमिर का इस्तेमाल करके देखिए, कितना अच्छा लगेगा, आपके घर में सब अचानक चौंक जाएंगे कि अरे वाह बच्चे ने कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, है ना। अब जैसे उन्होंने कहा कि भले शक्ति विज्ञान में है निहित वो, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा से, कितनी अच्छी बात है कि विज्ञान में ही शक्ति है जिससे हम अंधेरी रात में भी बल्ब जलाकर उजेला कर देते हैं, मतलब उजेले को वो पूर्णिमा से बता रहे हैं और अंधेरे को अमावस से। तो कभी कभी अच्छी कविताएं अच्छा साहित्य भी हमारी भाषा को ठीक करने में बहुत मदद करता है। अब लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार मर्यादा शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसका अर्थ क्या है। बच्चों मर्यादा का अर्थ सम्मान होता है, संयम होता है और शालीनता होता है। जब हम किसी से विनम्रता से बात करते हैं, उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए बात करते हैं और ऐसे शब्द चुनते हैं जो किसी को चोट ना पहुंचाए, बस वही भाषा की मर्यादा कहलाती है, है ना। वो कहते हैं ना कि मीठे बोल अमृत समान और कटु वचन तीर और जहर के समान होते हैं, है ना। एक बच्चा कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसकी भाषा अच्छी नहीं है तो लोग क्या करते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। इसके साथ मत खेलना, आपने देखा होगा ना कई बार मम्मियाँ निकलती हैं, वो कहती हैं देखो उसके साथ बिल्कुल नहीं खेलोगे, वो बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है और तुम भी वैसे ही बोलने लगोगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि संगत का असर पड़ता है और बहुत तेज़ी से पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि छोटे बच्चे वही बोलते हैं जो वो घर में सुनते हैं। यदि घर में धन्यवाद कृपया क्षमा कर दीजिए जैसे शब्द सुनाई देंगे तो बच्चा वो सीखेगा, और यदि घर में हर समय ऊंची आवाज़ क्या कर रहे हो, सुनते क्यों नहीं हो, इधर आओ यहाँ बैठो, अगर ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होगा ना बच्चों से, तो बच्चे भी वही बात करेंगे। टीवी मोबाइल इंटरनेट इतना एक्सपोजर आप लोगों के लिए बच्चों अच्छा नहीं है। हम जो कार्टून देख रहे हैं आज, जो वीडियो देख रहे हैं, जो रील्स देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब में आप देखिएगा कि भाषा की मर्यादा धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। मतलब कई बार मैंने देखा है कि आजकल बच्चे चल भग जा तू इसको बहुत आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं। हट यहाँ से, सुना ये? धीरे धीरे बच्चों को इसमें मजा नजर आने लगता है, हाँ वो इसको अपनी भाषा का हिस्सा ही बना लेते हैं। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि कैसे हैं आप तो कैसा लगेगा आपको, और मैं ये कहूँ और बता सब ठीक चल रहा है कैसा लगेगा आपको, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है? पहला वाला ना, क्योंकि उसमें आपके लिए भी एक सम्मान है। आप उम्र में छोटे हो लेकिन फिर भी मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ आप ठीक हो ना, घर से कुछ खाकर आए हो। अब यहाँ पर कोई मैं पूछ लूँ तो ठीक है सब ठीक चल रहा है, भूखा भूखा तो नहीं है, दोनों बातें एक हैं ठीक, लेकिन क्या है दोनों बातों में सबसे बड़ा अंतर है लहजे का, सबसे बड़ा अंतर है भाषा की मर्यादा का। और बच्चों ये तो हमने सीखना होगा क्योंकि हमें तो बहुत आगे जाना है ना। कवि भी कह रहे हैं ना अभी जो कविता सुनाई उसमें कि युगों से तुम्हीने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। हवा को पवन कहते हैं। उसने कई बार ऐसे खूबसूरत स्नेह के दीप बुझा दिए हैं, लेकिन तुमको क्या करना है, बार बार स्नेह का दीपक जलाना है, और जो मैंने आपसे कहा उसका भी ख्याल रखना है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो फिर आपको और ध्यान से भाषा का इस्तेमाल करना है। एक बार मैं एक घर में गई थी, वहाँ पर दादी बार बार कह रही थी कि बेटा बेटा हमारा सीरियल लगा दो, और बच्चा लगातार एक ही बात कह रहा था, दादी चुप करो यार बहुत बोलती हो आप, नहीं लगा रहा मैं आपका। जो माता पिता थे उन्हें क्या लग रहा था, बच्चा लाड़ में बोल रहा है ना, कि ठीक है मैंने जब बोला ये बोल कैसे रहा है, तो जानते हैं उनके उस बच्चे के माता पिता ने मुझसे क्या कहा, अरे ये और उसकी दादी बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनमें तो ये सब पूरे दिन चलता है, हम तो यहाँ बैठ के मज़े लेते हैं। ये बात हो सकता है कि किसी को अच्छी लगे लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना। अगर दादी दोस्त हैं तब भी दादी दादी तो पहले रहेंगी ना, दोस्त तो बाद में बनेंगी ना। दादी की उम्र, दादी का इतना लंबा अनुभव, वो सब इस भाषा के लायक है क्या? चुप रहो दादी बहुत बोलती हो आप, इसके लायक हैं दादी? ना बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और आपको किसी से भी, मैं तो बोलती हूँ अपने दोस्तों से भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, दादी तो बहुत बड़ी बात होगी, दादी से तो बहुत और आपका रिस्पेक्ट भी दुगना हो जाना चाहिए क्योंकि वो तो आपकी पापा की मम्मी है, तो आपको उस लिहाज से बोलना चाहिए, है ना। और कभी ये प्रेम नहीं कहता कि आप अपनी भाषा का संयम भूल जाए, है ना। कभी कोई किताब ये नहीं कहती कि किसी के प्रेम में पढ़कर या किसी से लाड़ में आप भाषा की मर्यादा भूल जाएं, क्योंकि बच्चों जो बातें अभी आपको मजाक लग रही हैं वो थोड़ा बड़ा और हो जाओ आप लोग फिर आपको लगेगा सब टोकेंगे, किसी के घर जाओगे सब टोकेंगे। और एक और चीज़ जो मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, एक और भाषा है, वो भाषा है ब्रो, वो भाषा है सिस, वो भाषा है क्या है, अधूरी भाषा। हाँ जब हमारे पास पूरे शब्द हैं, हमारी भाषा समृद्ध है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि बच्चों हम जो चल रहा है उस ट्रेंड को फॉलो करें, है ना। आजकल लिख भी अधूरा अधूरा रहे है ना, प्लीज लिखना है तो PLZ लिख के काम चला लेंगे, सिस्टर लिखना है तो SIS लिख कर काम चला लेंगे। आपको किस चीज़ की जल्दी है सोचिए, यहाँ तो हमारे लिखने की भाषा भी कैसी होती जा रही है। लोग कहते हैं कि ये ट्रेंड है, लोग कहते हैं कि ये चलता है, पर अगर सब कुछ अगर आप चलाने लगे ना तो आप ही चलते हो जाओगे, मतलब आप अपना स्थान बनाकर नहीं रख पाओगे, आपकी जो खूबियाँ हैं उसको समेट के नहीं रख पाओगे, आप भी वो भेड़ चाल चलोगे, और भेड़ चाल का तो आपको पता ही है कि भेड़ चाल का मतलब क्या होता है। भेड़ चाल मतलब एक भेड़ अगर गलत दिशा में चल दी तो सारी भेड़ें उसको फॉलो करने लगती हैं, है ना। तो हमारे पास तो दिमाग है ना बच्चों, हमें तो ये समझना है ना कि हमें क्या करना है। हमारी भाषा इतनी समृद्ध है, हम बहन भी तो लिख सकते हैं, बहन अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसके नाम से संबोधित कर सकते हैं, पूरा बोल सकते हैं, पर ये सिस ब्रो ये ठीक है कभी कभी के लिए, लेकिन इतना ट्रेंड फॉलो नहीं करें, है ना। और आपको एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि दोस्ती का मतलब और बहुत अच्छी दोस्ती का मतलब अभद्रता नहीं होती, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत प्रगाढ़ मित्र हो गए तो सम्मान बिल्कुल ही कम हो गया, बिल्कुल घट गया, बिल्कुल मतलब सिरे से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हो तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको आप बिल्कुल कंधे पे हाथ रख के या हर वक्त उसका मजाक उड़ाकर उसे संबोधित करो कि अरे छोड़ो इससे क्या होता है, ऐसे नहीं चलता बच्चों। अगर आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो तो और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करिए, आपको आनंद आएगा, है ना। और आज आपसे मैंने जो तीन भाषाओं की बात की, एक बोलचाल की भाषा, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत मैटर करती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उससे पहले हमारी बॉडी लैंग्वेज मायने रखती है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपकी मैडम कुछ पढ़ा रही होती हैं और आप पेन को ऐसे करके खटपट करते रहते हो, सुनाई आ रहा है आपको, सुनाई आया मैं आपसे बात करूं और बीच में ये डिस्टर्बेंस आता रहे, अच्छा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। ऐसे ही जब आपसे कोई बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, आप नज़रें झुकाए बैठे हो, आंखों में आँख डालकर बात नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके की हमारा इग्नोरेंस जाहिर करता है। तो हमें इस पर भी काम करना है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे कि शब्दों की ताकत कितनी होती है ना। जैसे बच्चों को देखा है आपने, कुछ बच्चे हम कहते हैं ये बहुत ताकतवर बच्चा है, कहते हैं ये कुछ भी सामान उठा लेता है, ये बहुत एक्सरसाइज करता है, ये बहुत दूर तक दौड़ लेता है, कहते हैं। वैसे ही अब मैं आपको शब्दों की ताकत से परिचय करवाती हूँ। जैसे आपको बुखार होता है तो डॉक्टर दवा देता है, वैसे ही जब आप शिक्षक के पास जाते हैं वो ज्ञान देता है। लेकिन एक अच्छा इंसान अपने शब्दों से एक नहीं कई लोगों का मन जीत लेता है, बहुत लोगों का मन जीत लेता है। अब आप सोच के देखो, आप कोई काम करो और आपसे आपकी मम्मी बोले शाबाश बेटा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, आपका मन करता है कि आप दोबारा काम करो, है ना, और अच्छा करके दिखाओ। और वहीं एक बच्चा काम करके आए और उसकी मम्मा ये बोले ठीक है दोबारा जब करो तो थोड़ा और ठीक करना, तो उसका क्या होता है, मनोबल हल्का सा टूट जाता है। ऐसे ही जब आपको कोई चीज़ कोई दे रहा है, आप उसको ये कह दो धन्यवाद, तो कितना अच्छा लगता है। और वहीं दूसरी ओर कोई कोई चीज़ दे और आप एकदम से पलट कर चल दो, उसको क्या लगता है, अरे मैंने इसको इतने अच्छे से चीज़ दी और इसने तो मतलब उसे जताया भी नहीं कि उसको कैसी लगी, उसको अच्छी लगी नहीं लगी, कुछ नहीं। फिर एक बार अगर गलती हो जाए कोई और आप एक बार में बिना किसी बहस के बोल दो ठीक है इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, कितनी बड़ी ताकत है ये। सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई ख़त्म हो जाती है एक सॉरी बोलने से, कितनी सारे लोग आपसे एक बार में इम्प्रेस हो जाते हैं एक गुड मॉर्निंग करने से, एक नमस्कार करने से, एक सुप्रभात बोलने से। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अपनी वोकैबुलरी पर बहुत काम कीजिए बच्चों, अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए, है ना। रोज़ 5 नए अच्छे शब्द सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, समाचार सुनिए, बड़ों से आदरपूर्वक बात कीजिए, गुस्से में भी बोलने से पहले 10 तक गिनिए ताकि आपके पास कोई बुरा शब्द आपकी जीभ से निकलना भी चाह रहा है तो वो 10 तक की गिनती उस शब्द को रोक ले। अब शब्द की जगह सम्मानजनक शब्दों का चुनाव कीजिए। एक बार की बात सुनाती हूँ बच्चों। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तकिए की रुई हवा में उड़ा दो। शिष्य ने ऐसा कर दिया। फिर गुरु ने कहा अब सारी रुई वापस इकट्ठी कर लो। शिष्य बोला यह तो असंभव है। गुरु मुस्कुराए और बोले बेटा शब्द भी ऐसे ही होते हैं, है ना, एक बार मुंह से निकल जाए ना वापस नहीं आ सकते। जैसे तकिए की रुई एक बार आप निकाल दो, फिर आप कितनी भी उसको तकिए के भीतर डालने की कोशिश करो या तो शेप बिगड़ जाएगा या तो वो तकिया पहले जैसा नहीं रहेगा। वैसे ही जब आप किसी से बुरे शब्द बोल देते हो, भले ही वापस आप जुड़ जाओ, दोस्ती हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में गांठ पड़ जाती है बच्चों। तो ठीक है, अब हम लोग संकल्प लेते हैं आज बाल सभा में, हर बार ही करते हैं। आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए, मैं जो जो बोलूंगी अब उसे आप दोहराएंगे। आज से हम सभी से सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि हर रोज नए 5 शब्द सीखें। आज से हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ना कोई कहानी या कविता पढ़कर ही सोएं। आज से हम कोशिश करेंगे कि नियमित पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ है उसे एक पेज में लिखने की कोशिश करेंगे, और अपने बड़ों से, अपने साथ के दोस्तों से, सभी से सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करके अपने व्यक्तित्व को और निखारेंगे। आंखें खोल लीजिए और अब अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए, क्योंकि आज की बाल सभा में इतना ही बच्चों, है ना? चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा, है ना? और हाँ, जो जो बातें मैंने आज आपसे कही है ना, उनको प्लीज फॉलो करना, उनका ध्यान रखना और उन पर अमल करके मुझे ज़रूर अगली बाल सभा में जब मैं आऊँ तो मुझे पता चलना चाहिए किसी न किसी बात से आपकी, कि आप घर में अच्छा व्यवहार कर रहे हो, है ना? और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे बताओ तभी पता चलेगा, मुझे तब भी पता चल जाएगा जब आपके बड़े आपसे खुश रहेंगे, है ना? तो बस अपने घर में कोशिश करिए कि सबसे अच्छे से बात कीजिए। हाँ, चलती हूँ, बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: बाल सभा।
3: तो श्रोताओं, ये थी बच्चों की खूबसूरत सी महफिल जिसे आप कहते हैं बाल सभा। आगे बहुत कुछ खास आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं, बने रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: हेलो, पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
5: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। आइए आज इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं चंद पंक्तियों से, जो कि कुछ इस तरह से हैं। दिलों में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, दिलों में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमानों से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश जुनून को, वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश जुनून को, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। वाकई में श्रोताओं, इन दिनों कार्यक्रम में हम जिस जंग की बात कर रहे हैं, यानी कि कारगिल की लड़ाई की, इसकी गौरव गाथा हमारी सेना के ऐसे ही नौजवानों की कहानी है जिन्होंने सीमा पर अपनी बहादुरी, अपनी दिलेरी और बलिदान से एक मिसाल कायम की है। श्रोताओं, कारगिल का युद्ध सबसे मुश्किल जंगों में यूं ही नहीं गिना जाता। ये युद्ध बेहद ही कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया था, जिनका जिक्र हम कार्यक्रम के पिछले एपिसोड से कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों का भी सामना करते हुए हमारे देश की सेना के बहादुर सिपाहियों और अफसरों का अपनी मुट्ठी में देश के लिए जान रखने का जज्बा और दिलेरी ने कारगिल के पहाड़ों को भी नतमस्तक कर दिया। उनकी वीरता, उनकी सुनियोजित रणनीति और देश के प्रति मर मिट जाने के जज्बे ने ही इस युद्ध में हमें सफल बनाया और दुश्मन को उखाड़ फेंका। श्रोताओं, कारगिल के युद्ध में हमने अब तक जाना कि द्रास सेक्टर को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कर दिया था। आइए चलते हैं सन 1999 के कारगिल में एक बार फिर, जहां कारगिल की दूसरी चोटियों पर बैठे दुश्मन से लड़ने की चुनौती भारतीय सेना के लिए अभी बाकी थी। कार्यक्रम में इस जंग के हर पहलू को, हर तथ्य को हमारे सामने रखने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और कारगिल के इन क्षेत्रों का स्वयं भी अनुभव रखते हैं। स्वागत है सर एक बार कार्यक्रम में फिर से आपका।
2: जय हिंद पूर्वा जी।
1: जय हिंद सर।
2: जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, इससे पहले कि हम एपिसोड में बात करें
1: जी,
2: कुछ एक बातें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल सर।
2: जैसे आपने अभी बोला कि हमने द्रास सेक्टर में विजय हासिल करी, फिर हम बाकी देखते हैं। जो ये इंट्रूजन था, जैसे पूरा हमने पहले भी बताया कि जैसे 134 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली था, तो इसमें जो अलग अलग जगह पे इंट्रूजन हुआ था, जिसमें कि द्रास सेक्टर है, उसके अगर हम वेस्ट में देखें श्रीनगर की तरफ, तो मशको वैली में इंट्रूजन हुआ था
1: जी।
2: और अगर द्रास से हम कारगिल की तरफ जाते हैं
1: जी,
2: उस इलाके में, एंड देन बटालिक सेक्टर उसके ऊपर जो आते हैं, ये जो पूरे इलाके थे
1: जी,
2: बटालिक चोर बाटला सेक्टर है, ये सभी इलाकों में एक साथ
1: जी,
2: जो है युद्ध हो रहा था,
1: पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था ये युद्ध, तो क्योंकि घुसपैठिए तो
2: जी
1: सारे तरफ थे,
2: सारी तरफ से, मतलब जो युद्ध हो रहा था, जो हम इनको धकेल रहे थे, जो ये कैप्चर हो रही थी
1: जी,
2: तो ये सारी की सारी जो है कार्रवाई एक साथ चल रही,
1: ये पूरी युद्ध की प्रक्रिया सब तरफ चल रही थी
2: जी, सब तरफ
1: एक ही
2: चल
1: समय
2: रही थी। और जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इन मच बेटर मैनर, वी आर टेकिंग इट वन बाय वन
1: जी। बिल्कुल सर, ये इस तरह से हम इसको आसानी से समझ भी सकते
2: हैं। एग्जैक्टली। एंड दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, जब हम किसी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ एक लोकेशंस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं
1: जी।
2: जैसे हमने टाइगर हिल के बारे में जिक्र किया था, जैसे कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी, मतलब और भी जो है लोकेशन है, तो उसके आसपास जैसे एनिमी है
1: जी।
2: तो उनको भी कैप्चर करने के लिए यूनिट्स ने जो है पूरा दमखम लगाया था।
1: जी बिल्कुल सर।
2: एक एक लोकेशन के ऊपर जो है कैप्चर करने के लिए एक एक मतलब ऑपरेशंस लॉन्च हुए थे। जैसे माउंटेन्स में क्या होता है कि इन्फेंट्री डोमिनेटेड ऑपरेशंस होते हैं,
1: जी, मतलब पैदल सेना
2: जो है प्राइमरीली वो अधिक प्रभावी रहते हैं, उनका रोल रहता है।
1: जी बिल्कुल।
2: लेकिन जो ये युद्ध था इसमें मतलब इट वॉज ए कोऑर्डिनेटेड बैटल जिसमें की सेना के जितने भी मतलब आर्म्स एंड सर्विसेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनका जो कंट्रीब्यूशन था विच वॉज इक्वली देयर,
1: बराबरी से था।
2: और इस वक्त जब कारगिल का युद्ध हो रहा था पूरे देश में सेनाएं सतर्क थी, यहाँ तक कि इंडियन नेवी ने भी उस समय ऑपरेशन तलवार अरेबियन सी में लॉन्च किया था ताकि अगर किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो उसके लिए वो लोग अलर्ट थे।
1: एंड यदि युद्ध फैल जाए तो हम उसको हैंडल कर सकें।
2: तो इट मतलब एवरीबॉडी वाज एक्टिव ड्यूरिंग दिस वॉर, नॉट दैट कि ओनली द पीपल हु वर देयर इन कारगिल, ऑफ कोर्स दे वर फाइटिंग द वॉर बट अदर्स वर आल्सो अलर्ट,
1: उतनी सतर्क और चौकन्नी थी
2: जी
1: चारों सीमाओं पर, चारों दिशाओं।
2: जैसे इसमें अगर हम IAF इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वो पूरे देश की जो बॉर्डर्स के पर वो चौकन्ने थे। इसके अलावा जो है कारगिल में तो उनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था
1: ऑपरेशन सफेद सागर के,
2: ऑपरेशन बिल्कुल सही बोला आपने, ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत जिसमें कि उन्होंने जो है एनिमी जहां इंट्रूडर्स थे इनके ऊपर अटैक्स लॉन्च किए थे, बमबारी करी थी, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल जो थी वो थे, बॉम्ब्स गिराए थे। देन उसके अलावा उन्होंने रेकी मिशंस किए थे जिससे हमें पता चला था कि सिचुएशंस क्या हैं। उनके पास भी ये रिस्ट्रिक्शन थी कि उनको LOC क्रॉस नहीं करना था।
1: ये सबसे बड़ा सर एक सीमा थी हमारी इस युद्ध में कि हमको सीमा नहीं लांघनी,
2: ये हमारी सीमा थी। उसके बावजूद जो है जैसे उनका हेली लिफ्ट के जो ऑपरेशन थे, कैजुअल्टी इवैक्यूएशंस के थे, एंड इवन जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने मोबिलाइजेशन में जो है
1: पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है
2: जी, तो उसमें जो है मोबिलाइजेशन में जो उनका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस वॉर वॉज फॉट बाय ऑल फोर्सेस एंड इट वॉज absolutely a coordinated effort by everyone. Of course, on ground it was the infantry which was predominantly fighting the battle. तो इसलिए हम जब जिक्र कर रहे होते हैं तो आपको ज्यादा infantry का जिक्र आता है बार बार आता
1: जी,
2: है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने पिछली बार द्रास सेक्टर देखा था इसी तरह से उसके जो वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो मशको वैली आती है,
1: मतलब श्रीनगर की ओर,
2: श्रीनगर की ओर जो है तो ये जो है मशको वैली आती है। अब यहाँ पे भी जो है पाकिस्तान आर्मी ने काफी उनका इंट्रूजन था और उन्होंने कुछ डोमिनेटिंग हाइट्स जो थी वो ऑक्यूपाई करी हुई थी जिसके कारण कि अगेन द सेम थिंग वो नेशनल हाईवे को डोमिनेट कर रहे थे, हमारी मूवमेंट्स के जो है मुश्किल पैदा कर रहे थे। तो उसमें एक हाइट थी 0.4875 जिसका जिक्र बार बार अगेन आता है, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था और वहां से उनको हटाना हमारे लिए भी इसलिए जरूरी था क्योंकि हम नेशनल हाईवे को बचाना था, नेशनल हाईवे को हम रोक नहीं सकते, उसमें रुकावट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए जो है इसको कैप्चर करने की जिम्मेवारी प्राइमरीली 13 जैकरीफ यानी 13th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स उनको दी गई थी। ये जो बटालियन है अगर आपको याद होगा द्रास में भी इन्होंने बहुत अच्छा
1: रोल निभाया था सर,
2: निभाया था 0.5140 के कैप्चर में तो इस बटालियन को फिर से ये टास्क मिला था। तैयारी के बाद जो है उन्होंने 4 जुलाई पे अटैक लॉन्च किया इसके ऊपर। अब अगेन सेम सिचुएशन, सेम काइंड ऑफ माउंटेनियस टेरेन जो हम जिसका हम जिक्र बार बार करते आ रहे हैं। तो सोल्जर्स जो थे आगे बढ़ रहे थे, फायरिंग आ रही थी, इंटेंस फायरिंग आ रही थी, तो मतलब प्रोग्रेस स्लो रहती है थी, बट इट वाज अ वेरी डिटरमाइंड एफर्ट्स कि हमारा काम है, हमने करना है कुछ भी हो जाए। कैजुअल्टीज हो रही थी लेकिन उसके बावजूद भी कोई पीछे नहीं हट रहा था। तो जब ये अटैक लॉन्च हुआ, रात हुई, पूरा रात के बाद जो है इवन डेलाइट हो गई। अब डेलाइट के ऊपर जो है दुश्मन को आप दिख रहे हैं, उसमें आर्टिलरी प्लेड ए वेरी मेजर रोल, जो है आर्टिलरी का मैसिव फायर जो है एनिमी के ऊपर डाला गया।
1: जी
2: बिल्कुल। एंड फिर भी देखिए, ये एक क्वालिटी होती है सोल्जर्स की कि कितना भी खतरा है, कितनी भी मुश्किलें हैं, लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे थे। भूखे थे, प्यासे थे, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी जगह पे डटे रहे और निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो जो ये जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं हाइट का, जो इनका ऑब्जेक्टिव था, उससे पहले भी मतलब उस नीचे कुछ पोस्ट थी
1: जी,
2: तो उनको कैप्चर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि तभी जो है आप आगे बढ़ के चौड़े पे जा सकते हैं। तो ये जब लड़ाई चल रही थी तो एक तरह से स्टेलमेंट आ रहा था, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल जैसे आ रही थी। तो इसमें एक सोल्जर थे, राइफलमैन संजय कुमार
1: जी,
2: जो आज आप जानते हैं ऑनरेरी कैप्टन हैं
1: जी,
2: परमवीर चक्र विजेता हैं
1: जी।
2: तो उन्होंने काफी अदम्य साहस का परिचय दिया था। वो अपनी लीडिंग प्लटून में थे कंपनी की, उन्होंने वॉलंटियर किया, वॉलंटियर करके जो है वो आगे अटैकिंग कॉलम के साथ गए थे और दुश्मन पे जो है उन्होंने आगे बढ़ते हुए हमला किया था। एंड सी अगेन जो है इट नीड्स लॉट ऑफ करेज ऐसे कार्य करने के लिए, जो है आगे बढ़ने के लिए। जब एक तरह से आप देखिए बिल्कुल सामने से मौत आ रही है, फिर भी जो है अपनी परवाह ना करके, बिना किसी जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये वीर बहादुर सोल्जर जो है
1: जानबूझकर निर्णय लेना आगे बढ़ने का।
2: हाँ, अगर सोच समझ के करेंगे तो कर ही नहीं सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल सर।
2: ये एक जोश होता है
1: जी,
2: ये जोश होता है ठीक है। और मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई जानबूझ के कर रहा है, मतलब बट ये एक जोश जो होता है वो उस समय
1: जी,
2: एक अपने अंदर इतना हौसला होता है
1: जी,
2: ये नहीं होता कि हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे
1: जी,
2: ये होता है कि मैं उसको मारूंगा। अ सोल्जर इज मेंट नॉट टू डाई फॉर हिज कंट्री, ही इज to ensure that the other chap dies for his country.
1: बिल्कुल सर,
2: है ना
1: सर, वो बोला भी गया है ना कि बंदूक में दम नहीं होता, सिपाही में दम होता है।
2: Exactly.
1: जज्बा सिपाही में होता है,
2: जज्बा सिपाही में होता है। तो संजय कुमार जी जो थे उन्होंने जो है बिल्कुल अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए आगे बढ़े, दुश्मनों पे उन्होंने अटैक किया था और उनको देख के जो है फिर बाकी जो उनके साथ जोश बड़ा वो काफी ज्यादा था। वेर एबल टू कैप्चर वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, उसको फ्लैट टॉप बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि देखिए फ्लैट टॉप से एक फुटहोल्ड मिला जिसके कारण जो है 0.4875 पे हम मतलब जो है 13 जैकरी कब्जा करने के लिए रास्ता आसान हो गया। अब इसमें जो है संजय कुमार जी को भी खुद को भी जो है घायल हुए थे, बुलेट इंजरीज हुई थी। बट ऐसे ही लोग होते हैं जो अपनी ड्यूटी और अपने देश को आगे रखते हैं, जिनके कारण बैटल्स जीती जाती हैं। एंड इन्हीं लोगों के जो बहादुरी होती है जो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करती है, इसलिए जो है इनका नाम इतनी इज्जत से लिया जाता है। जैसे कि आपने जिक्र किया था, उनको इस अदम्य साहस के लिए, उनके आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी के लिए जो है परमवीर चक्र से
1: सम्मानित
2: किया गया था। आज वो ऑनररी कैप्टन है एंड आज भी जो है उनकी जो वीरता है उसको याद करके लोगों में काफी सोल्जर्स में काफी जोश भर जाता है। तो 13 जैकरिफ ने ये फ्लैट टॉप फीचर कैप्चर करने के बाद अपने एफर्ट्स लगाने शुरू किए 0.4875 को कैप्चर करने के लिए। अब 4875 की लोकेशन ऐसी थी कि उसके पीछे मतलब नॉर्थ में एक पोस्ट थी जो जहाँ से एनिमी जो है फायर कर रहा था और इंटरफेरेंस कर रहा था, आगे बढ़ने से मतलब जो है रोक रहा था। अब उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी था और ये जो काम है मतलब लोकेशन के कारण आर्टिलरी फायर वगैरह से नहीं हो सकता था, उसके लिए इन्फेंट्री को ही जाके करना था। तो इस समय जो है हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जो ऑलरेडी अपनी बहादुरी और अपनी लीडरशिप प्रूव कर चुके थे, उन्होंने वॉलंटियर किया, वो सामने आए
1: एक बार फिर से, उन्हें जिम्मेदारी दी गई,
2: उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मैं जाऊंगा और इसको मैं निस्तनाबूद करके जाऊंगा।
1: दिल मांगे मोर के कारण
2: ये लोकेशन ऐसी थी कि जो इट्स वेरी स्टीप क्लाइम जैसे है, और बहुत नैरो था, मतलब उसके दोनों तरफ खाई है, बहुत छोटा सा सकरा सा रास्ता था जिसपे चलते हैं। अगर मैं उसका एग्जांपल आई डोंट नो, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको दोनों तरफ खाई दिखती है और आप बहुत ही नैरो उसमें चल रहे होते हैं एंड अब आप सामने से फायर आ रहा है, आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं,
1: बचना भी है
2: और साथ में दुश्मन को मारना भी है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा विद हिज टीम मूव्ड अहेड एंड ही अटैक द एनिमी, ठीक है, ओके, और करके जो है हैंड टू हैंड फाइट में, मतलब दे वर एबल टू कैप्चर द पोस्ट बाय किलिंग ऑल ऑफ देम। पोस्ट तो मतलब उनके साहस के कारण, इनके मोटिवेशन, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के कारण कब्जे में आ गई, बट अनफॉर्चुनेटली कैप्टन विक्रम बत्रा ही सकम टू हिज इंजुरीज एंड देश ने एक बहुत ही बहादुर वीर को खोया था। मेरे ख्याल से शायद ही कोई भारतीय होगा जो ये सुन के जिसकी आंखें नम ना हुई हों उस समय। एंड राइटली एंड वेरी करेक्टली ही वाज अवार्डेड परमवीर चक्र। ही इज एक्चुअली द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव।
1: जी सर।
2: एंड मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाली सदियों तक जो है
1: इनको याद रखा जाएगा,
2: इनको याद रखा जाएगा,
1: इनके बलिदान को भूला नहीं जा सकता सर, हम हमेशा इनके ऋणी रहेंगे।
2: बिल्कुल। और जो सोल्जर्स हैं वो उनसे काफी प्रेरित रहते हैं और रहेंगे भी। तो आप ये देखिए 13 जैकरिफ, मतलब 13th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, इस ऑपरेशन में उनके सोल्जर्स ने कितना मतलब वीरता दिखाई, कितना बलिदान किया कि उनको दो दो परमवीर चक्र मिले थे, जो कि बहुत यूनिक होता है।
1: जी सर।
2: बहुत
1: एक ही युद्ध में,
2: एक ही युद्ध में जो है उनको जो है दो दो जो है परमवीर चक्र मिले थे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब एक हाइट कैप्चर होती है तो उसके आसपास भी जो होता है और भी लोकेशंस होती हैं, तो इसमें 13 जैकरिफ के अलावा भी बटालियंस थी जिनको टास्क दिया गया था और भी इम्पोर्टेंट जो लोकेशंस थी उनको कैप्चर करने का। और इन सभी जगहों पे जो हमारे यंग ऑफिसर्स थे, यंग सोल्जर्स थे, इनकी जो परफॉर्मेंस थी आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है, अगर आपको याद हो उसमें कैप्टन अनुज नायर होते थे 17 जाट के जो है, और उनके आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी और लीडरशिप के लिए उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऑल्दो वी लॉस्ट हिम, लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हुए थे।
1: हर सिपाही या हर अफसर की एक कहानी है सर।
2: बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। इन्हीं के कारण जो है हमें सफलता मिली थी। तो इसी तरह से अगर हम आगे देखेंगे तो द्रास के बाद कारगिल आता है, कारगिल से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो बटालिक आता है। तो बटालिक सेक्टर से आगे एक पास आता है चोरबाट ला, उसका नाम है चोरबाट और ला,
1: ला
2: इधर पास दर्रा, ठीक है। तो इस इलाके में भी जो है पाकिस्तान ने घुसपैठ किया था और उनकी जो नदन लाइट इन्फेंट्री है पाकिस्तान की, उसके जो ट्रुप्स हैं वो करीब 8 से 10 किलोमीटर तक अंदर आए थे।
1: अच्छा।
2: और उन्होंने जो है डोमिनेटिंग रिज लाइन थी वहां पे, उनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। उन्होंने भी उस समय भी नाम सुनोगा जुबार, कुकरथांग, खालूबार, ठीक है, पॉइंट 5203। तो इस इलाके में भी मतलब ये सब जैसे मैंने पहले ही बोला समांतर उस ग्रुप में जो है वॉर चल रहा था।
1: जी, बिल्कुल।
2: तो यहाँ पे भी जो है बटालियंस जो है जिनको की टास्क दिया गया था
1: वो इसी दौरान ये भी यहाँ पर लड़ रहे थे।
2: बिल्कुल
1: जी।
2: उनके भी प्रयत्न जारी थे कि इनको जो है यहाँ से निकाला जाए जो है। तो इस सेक्टर में प्राइमरीली अगर आप देखेंगे तो 12 जैकलाई है, मतलब अगेन वो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स थी, ये जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है, दोनों इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है। तो ये थी लद्दाख स्काउट्स थे, देन हमारी जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उनकी टीम्स थी, एंड 5 पैरा थी जो पैरा बटालियन है। तो ये मेजर फोर्सेस थी जो मतलब जिनको कि रिकैप्चर करने का और जिम्मेदारी गई थी और जो इवैक्यूएट करने की, दुश्मनों को भगाने की जिम्मेदारी गई थी। इसमें भी जो है जो फॉर्मेडेबल फीचर्स थे काफी जो है, जिसमें कि जिसको कि अटैक करके जो है मल्टी डायरेक्शन से अटैक करके जो है लॉन्च करके जो है विद द सपोर्ट ऑफ मैसिव आर्टिफायर इनको जीता गया था। यहाँ पे भी जो है अगर आप देखेंगे बहुत सारी लोकेशंस थी, ठीक है, उसमें एक जो लोकेशन जिसको बोला 5203 थी एंड इस पे जो कैप्चर किया था इट वॉज ए मेजर सक्सेस फॉर इंडियन आर्मी, क्योंकि इसके कारण जो है जो खालूबार जो रिश थी दूसरी जो है, शायद आपको ये नाम अजीब लग रहे होंगे जब मैं बोल रहा हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये लोकेशंस हैं
1: जी सर,
2: जिसको कि मतलब आप जब हम अभी तक जिक्र कर रहे 4875 हाइट जिक्र कर रहे थे, ऐसे 5203 मतलब उससे भी ऊंची हाइट,
1: उससे भी ऊंची
2: हाइट है, उतनी ही मुश्किलें हैं जो है। तो यहाँ पे भी जो है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, अगेन जो है ही हैज बीन अवार्डेड परमवीर चक्र पोस्टमसली, अगेन ए वेरी फियरलेस यंग बोल्ड ऑफिसर। ये जो थे ये 11GR 11 गोरखा राइफल्स की रेजिमेंट जो है उसकी फर्स्ट बटालियन जो है उसको बोलते हैं 111GR उसके थे। तो लड़ते लड़ते शहीद हुए थे और इनके कारण जो है इनकी जो सक्सेस थी जिसमें जो अगेन जैसे हमने थोड़ी देर पहले एरिया फ्लैट टॉप की बात करी थी, ऐसे ही इस रिज लाइन के ऊपर वो जो है अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने में सफल रहे थे और जिसके कारण जो है फिर उनकी बटालियन को फाइनली जो है कालूबार कैप्चर कर पाई थी। एंड अगेन
1: आर्मी के लिए हुआ था तो उनसे पूछा गया था कि आप आर्मी में क्यों आना चाहते हैं, तो उनका एक ही जवाब था कि मुझे परमवीर चक्र चाहिए,
2: शायद दिली इच्छाएं थी
1: जी सर,
2: जज्बा था
1: जी सर,
2: हौसला था और शायद भगवान ने वो मौका भी दिया
1: जी सर,
2: लेकिन शायद अगर हमारे साथ रहते तो और भी अच्छा
1: और भी अच्छा होता बिल्कुल सर, पर वो भी वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक रहेंगे, प्रेरणा स्रोत रहेंगे
2: बिल्कुल। ये लोग तो वो हैं जिनके कारण जो है आर्मी फक्र से जो है चलती है
1: जी बिल्कुल सर,
2: हम जो है फक्र से इन्हें याद करते हैं
1: जी,
2: और इनके कारण ही जो है एक मोराल बूस्टिंग रहता है
1: जी सर।
2: और ये फैक्ट भी है जब हम इस लोकेशंस पे जाते हैं तो यू ऑलवेज रिमेम्बर देम
1: जी सर, जैसे अब कैप्टन बत्रा के नाम से बत्रा टॉप है,
2: हाँ बिल्कुल है। जब हमने चोर बाटला के एरिया की बात करी उसके आगे मैं एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा जिसको कि सब सेक्टर हनीफ बोलते हैं, जहाँ चोर बाटला है उससे अगर हम LOC के साथ साथ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये सब सेक्टर हनीफ आता है। सब सेक्टर हनीफ के आगे फिर जो है सदर्न ग्लेशियर यानी कि जो ग्लेशियर वाला एरिया है वो शुरू हो जाता है
1: जी।
2: अब ये जो सेक्टर है अगेन साल्ट और रिज पे जो है काफी इम्पोर्टेंट हाइट्स थी, तो May 1999 में जब युद्ध शुरू हुआ था जब हमें इंट्रूजन के बारे में पता चला था तो ये डिसाइड किया गया कि इसके ऊपर जितनी इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको हमको ऑक्यूपाई करना जाना चाहिए ताकि वहां पे किसी तरह का इंट्रूजन ना हो। तो इसके लिए जो 11 राजर्फ अगेन दैट इज 11th बटालियन ऑफ राजपुताना राइफल्स को ये टास्क दिया गया था कि वहां पे लोसी के ऊपर लोकेशन थी 0.5500 ठीक है, और वहां पे डिफेंसेस इख्तियार करने का और उसके साथ साथ आसपास का जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उस पे भी। कैप्टन हनीफ जो थे वेरी यंग ऑफिसर, वो आर्मी सप्लाई कोर के थे और उस समय जो है 11 राजीव के साथ अटैचमेंट पे थे।
1: अच्छा।
2: जो सप्लाई ऑफिसर्स होते हैं सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं वो अटैचमेंट करते हैं 20 बटालियंस के साथ ताकि उनको एक एक्सपीरियंस रहेगा पूरा। ये जो यंग ऑफिसर था ही वॉज लीडिंग ए पेट्रोल टू कैप्चर एनिमी पोजिशन, तो उस दौरान ये जो है जब पहुंचे थे दुश्मन के लोकेशन के पास तो इनके ऊपर काफी इंटेंस फायरिंग हुई और जो हनीफ साहब थे ही अगेन जैसे यंगस्टर्स के बारे में अभी तक हमने जिक्र किया है सेम काइंड ऑफ क्वालिटीज, फियरलेस, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, आगे से मोटिवेटेड फ्रंट से लीड कर रहे हैं एंड ही एंगेज द एनिमी ठीक है, एंड इन स्पाइट ऑफ हैवी अपोजिशन मतलब जो है क्योंकि दुश्मन ऊपर से फायर और ये फिर भी जो है एक फुटहोल्ड बनाने में सफल रहे थे।
1: अच्छा।
2: और इस दौरान जो है उनको काफी गोलियां लगी थी जिसमें बहुत घायल हो गए थे बुरी तरह से, घायल होने के बाद बावजूद जो है वो लड़ते रहे एंड तब तक कि जब तक कि उनमें जान थी। अगेन ही मेड ए सुप्रीम सैक्रीफाइस फॉर द कंट्री और उनके कारण जो है ये फुटहोल्ड एस्टैब्लिश हुआ जिससे कि 11 राजीफ जो है आगे चल के चोटी पे कब्जा करने में कामयाब हुई थी। तो उनके ऑनर में ये जो है सेक्टर को हम सब सेक्टर हनीफ के नाम से जानते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं पर्सनली गया हूँ इस सेक्टर में।
1: अच्छा, अच्छा।
2: जब मैं सियाचिन में था
1: जी,
2: उस समय जो है मुझे मौका मिला था यहाँ जाने का, एंड बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है जिसमें हमारी पोस्ट नीचे दिखती है, उनकी पोस्ट ऊपर दिखती है। इट वॉज वेरी वेरी मतलब सरप्राइजिंग टू इवन इमेजिन कि वो समय मतलब कितना हौसला और कितना

0: नौजवानों की गौरव गाथा है जिन्होंने सीमा पर अपनी बहादुरी, दिलेरी और अपने बलिदान से एक मिसाल कायम की। इस युद्ध में जिन नौजवानों ने अपना बलिदान दिया है उनमें से ज्यादातर ने अपनी उम्र के 30 बसंत भी नहीं देखे थे। श्रोताओ, कारगिल की लड़ाई 22 से 24 साल के कुछ असाधारण नौजवान अफसर और सिपाहियों की जबरदस्त हिम्मत की लड़ाई है जिन्होंने अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। चाहे उनका जिक्र हो या ना हो, वो हमेशा हमारे हीरो रहेंगे और ये देश सदा उनका ऋणी रहेगा। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। सर, आप यहाँ आए और अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू पूर्वा जी। जय हिंद, जय हिंद श्रोताओं।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। श्रोताओं, मैं थी आपके साथ आपके रेडियो मित्र पूर्वा कले। तो दीजिए अनुमति अब इस कार्यक्रम से। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: हमारी सेना हमारा गर्व। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के विविध कार्यक्रम। ये है देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

0: कलाकार थे शिव भाई गुप्ता और उनके साथ ही। आइए सुनते हैं निमाणी लोक गायन। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।
1: एक छोटा सा बिरसा मुंडा जी के चरणों में समर्पित गीत

एक लिए कहेगा हो उसी समय का बीच में हाँ गरीब किसान का

आज पूरा भारत उन्हें बिरसा मुंडा जी के नमन कर रहे है। यारे आज

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, पानी के होने से ही धरती है, पानी के होने से ही जीवन है। ये जल अमृत है, धन है, निधि है, इसे संरक्षित करें। आसमान से बरसती ये पानी की बूंदें बादलों का वृत्तांत सुनाती हैं। पानी के बुलबुले सपनों के गीत गुनगुनाते हैं। धरती पर जलाशयों का होना, नदियों का कल कल बहना एक सस्वर कविता है, सुरीला सा संगीत है। नदियों का भरा होना धरती का हरा होना है, नदियों का भरा होना सपनों का हरा होना है। इसलिए जल संरक्षण करें, पानी बचाएं, कि बची रहे ये धरती, हरे रहें सपने और मुस्कुराता रहे जीवन।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना था हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल की प्रेरक कहानी। दादू से रुचि ने जाना कि कैसे हाल लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य वायुयान बनाकर भारत की आकाशीय शक्ति को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। लेकिन क्या केवल विमान बना लेना ही पर्याप्त है? क्या एक लड़ाकू विमान बिना रडार, बिना संचार प्रणाली और बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है? यही प्रश्न आज रुचि के मन में भी है। आइए चलते हैं दादू और रुचि के घर पर।
1: दादू, पिछली बार हमने हाल के बारे में चर्चा की थी। तेजस लड़ाकू विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी पाकर अब मेरे मन में और भी सवाल आने लगे हैं दादू। आज आपको उन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। बताइए ना, आप मेरे सवालों के जवाब देंगे ना दादाजी?
2: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया, बिल्कुल दूंगा। चलो आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ।
1: अरे वाह, मैं रेडी हूँ दादाजी। वैसे आज आप किस बारे में बताने वाले हैं?
2: सोचो सोचो, दिमाग लड़ाओ बिटिया।
1: पिछली बार आपने बताया था कि हाल विमान बनाती है, लेकिन विमान को रास्ता कौन दिखाता है? दुश्मन के विमान की पहचान कौन करता है? सैनिकों तक संदेश कौन पहुंचाता है? आज मुझे इसी बारे में जानने को मिलेगा। सही कहा ना मैंने?
2: अरे बिल्कुल सही कहा बिटिया, शाबाश। क्या बात है, लगता है तुम अब इन देश के संस्थानों की विशेषज्ञ बनने वाली हो।
1: क्या दादू, आप भी ना, अब बताइए भी।
2: हाँ हाँ बताता हूँ। सुनो बेटा, जिस प्रकार शरीर में आंखें, कान और मस्तिष्क महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह किसी भी आधुनिक सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां महत्वपूर्ण होती हैं। और भारत में ऐसी प्रणालियों के निर्माण का सबसे बड़ा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL।
1: तो आज हम BEL की कहानी सुनने वाले हैं।
2: हाँ बिटिया, आज हम उस संस्था की कहानी जानेंगे जो दिखाई कम देती है लेकिन देश की सुरक्षा में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है।
1: दादू, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की शुरुआत हुई कब थी?
2: किसी भी संस्था की कहानी जानने के लिए उसके जन्म का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में बेंगलुरु में की गई थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, उस समय भारत को रक्षा क्षेत्र में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बहुत जरूरत थी।
1: भला ऐसा क्यों दादाजी?
2: बेटा, आजादी के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी थी, सेना को आधुनिक बनाना था और रक्षा क्षेत्र में विदेशी देशों पर निर्भरता भी कम करनी थी। और फिर सरकार चाहती थी कि देश अपनी जरूरतों के लिए किसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहे। बस यही कारण था BEL की स्थापना का।
1: दादाजी, मतलब आत्मनिर्भर भारत का सपना तब से देखा जा रहा था?
2: बिल्कुल, आज जैसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं ना बेटा, उसकी नींव ऐसे ही संस्थानों ने दशकों पहले रखनी शुरू कर दी थी।
1: मतलब उस समय भारत में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बनते थे?
2: बहुत कम बनते थे बेटा। सेना को रडार, संचार उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। युद्ध या संकट के समय ये निर्भरता बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी।
1: तभी सरकार ने इसका समाधान खोजा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना करके। अच्छा दादाजी, तो आज BEL कितनी बड़ी संस्था है?
2: आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये केवल एक कारखाना नहीं है बल्कि देश भर में फैली अनेक उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का विशाल नेटवर्क है बेटा। इसके 9 प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं, जहां हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ कार्य करते हैं। और तुम्हें पता है, इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है।
1: नवरत्न का क्या मतलब हुआ दादाजी?
2: देखो बेटा, भारत सरकार कुछ उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके शानदार प्रदर्शन, लाभप्रदता, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय योगदान के आधार पर विशेष दर्जा देती है। इसे नवरत्न का दर्जा कहा जाता है।
1: तो क्या ये रक्षा मंत्रालय के अधीन बनाया गया संस्थान है?
2: बिल्कुल, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की विशेष और चुनौतीपूर्ण जरूरतों को पूरा करना था, इसलिए इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया।
1: तो दादाजी, इसका पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया?
2: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बेटा।
1: बेंगलुरु में?
2: उस समय बेंगलुरु धीरे धीरे विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा था, इसलिए BEL की पहली उत्पादन इकाई वहीं स्थापित की गई।
1: दादू, आपने बताया था कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो क्या इसके बाकी सारे कारखाने भी वहीं पर हैं?
2: नहीं बिटिया, जैसे किसी विशाल वृक्ष की शाखाएं दूर दूर तक फैलती हैं, वैसे ही BEL की उत्पादन इकाइयां पूरे देश भर में फैली हुई हैं।
1: सच में दादू? तो फिर बताइए ना, कहाँ कहाँ फैली है?
2: बेंगलुरु के अलावा गाजियाबाद, पंचकुला, कोटद्वार, हैदराबाद, मछलीपट्टनम, नवी मुंबई, पुणे और चेन्नई में इनकी प्रमुख इकाइयां हैं बेटा।
1: इतना विस्तार? दादाजी, कितना रोमांचक रहा होगा ना?
2: बिल्कुल, जैसे जैसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की आवश्यकता बढ़ती गई, BEL भी नई तकनीकों और नए उत्पादों के साथ आगे बढ़ती गई। छोटे से कारखाने ने धीरे धीरे एक विशाल संगठन का रूप लेना शुरू कर दिया बेटा।
1: पर दादू, इसकी इतनी सारी इकाइयां क्यों हैं?
2: क्योंकि BEL अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती है। अलग अलग इकाइयां अलग अलग तकनीकों और प्रणालियों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है बेटा।
1: मतलब किसी एक बड़ी मशीन के पुर्जे अलग अलग जगह बनाकर फिर वो एक जगह पहुँचाए जाते हैं?
2: बिल्कुल, इसके अलावा देश भर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है बेटा, और न्यूयॉर्क और सिंगापुर में भी इसके कार्यालय स्थापित हैं।
1: वाह, यानी BEL की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू,
2: आखिर
1: BEL ऐसा क्या बनाती है जो सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण है?
2: यदि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को हम सेना की उड़ान कहें, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसकी आँख, कान और मस्तिष्क है बेटा।
1: पर ये भला कैसे?
2: बिटिया रानी, अभी तो बताया मैंने तुम्हें, BEL रडार प्रणालियां बनाती है, और रडार दूर स्थित वस्तुओं को पता लगाने में मदद करता है। तुम है ना बेटा, बादाम खाना शुरू करो रुचि।
1: दादू, आप भी ना, जब देखो तब मेरा मजाक बनाते रहते हैं, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। पर मेरे प्यारे दादू है ना मुझे सब कुछ बताने के लिए, तो फिर से बता दीजिए।
2: अच्छा है बेटा, दादू को पेड़ पर चढ़ाते जाओ तुम।
1: क्या है दादू, आप भी ना। आप मुझे ये बताइए कि क्या इन रडार प्रणालियों से दुश्मन का विमान सीमा से दूर हो तब भी उसका पता लगाया जा सकता है?
2: बिल्कुल लगाया जा सकता है बेटा। इसके अलावा BEL सैन्य संचार उपकरण बनाती है, जिससे सैनिक सुरक्षित रूप से संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा दादाजी, ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली क्या है?
2: देखो बेटा, आज युद्ध केवल हथियारों से नहीं, तकनीक से लड़े जाते हैं, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली दुश्मन की संचार व्यवस्था और रडार को बाधित करने में सहायता करती है।
1: यानी अब तकनीक को भी हथियार बना लिया गया है।
2: BEL नौसेना प्रणालियां, टैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा प्रणालियां और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी विकसित करती है।
1: दादू, ये रडार किस तरह की तकनीक है?
2: रडार को समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं बेटा। मान लो तुम किसी पहाड़ी के सामने खड़ी होकर जोर से आवाज लगाओ, कुछ समय बाद वही आवाज लौट कर तुम्हारे पास आती है, जिससे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं।
1: हाँ, मैंने पहाड़ों में ऐसा होते देखा है।
2: हाँ, रडार भी ऐसा ही कुछ करता है बेटा।
1: अच्छा,
2: वो रेडियो तरंगें भेजता है, ये तरंगें किसी विमान, जहाज या मिसाइल से टकराकर वापस लौटती है। लौटने में लगे समय से उसकी दूरी, दिशा और गति का पता लगाया जाता है।
1: वाह दादाजी, यानी रडार हवा में देखने वाली आँख की तरह काम करता है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, फिल्मों में तो युद्ध बंदूक और टैंकों से होता है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्या होता है?
2: बेटा, आज के आधुनिक युद्ध में ना जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। बिटिया रानी, यदि दुश्मन की संचार व्यवस्था बंद कर दी जाए, उसके रडार को भ्रमित कर दिया जाए या उसके संकेतों को पकड़ लिया जाए, तो बिना गोली चलाए भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
1: फिर वही बात कि आज तकनीक भी युद्ध का हिस्सा बन चुकी है।
2: तभी तो BEL जैसी संस्थाएं देश की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
1: दादू, ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा है।
2: देखो बेटा, जब किसी मशीन के अंदर विशेष कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर लगाया जाता है तो उसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, जैसे वॉशिंग मशीन, कार, मोबाइल या मिसाइल के अंदर लगे विशेष प्रोग्राम।
1: तो इसका मतलब कि BEL केवल हार्डवेयर नहीं बनाती, सॉफ्टवेयर भी बनाती है।
2: हाँ बिल्कुल, आधुनिक रक्षा प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है।
1: दादू, अगर कोई BEL ज्वाइन करना चाहे तो उसे क्या तैयारी करनी होगी? कितने पद होते हैं, उसमें भर्ती कैसे होती है, जरा ये सब भी तो बताइए।
2: हाँ हाँ बेटा, बताता हूँ। ये सवाल केवल तुम्हारे मन में नहीं बल्कि देश के लाखों विद्यार्थियों के मन में आता है। BEL केवल कंपनी नहीं बल्कि ऐसा संस्थान है जहाँ विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और प्रबंधन से जुड़े अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं।
1: मतलब वहाँ केवल इंजीनियर ही काम नहीं करते?
2: नहीं नहीं, अक्सर लोग सोचते हैं कि BEL में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही काम करते होंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ अनेक प्रकार के विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
1: जैसे?
2: जैसे यहाँ वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, डेटा विश्लेषक, तकनीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी और कई अन्य विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
1: इतने सारे लोग, यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं दादाजी।
2: बिल्कुल, किसी भी बड़े संगठन की सफलता के पीछे अनेक प्रकार की प्रतिभाएं मिलकर काम करती हैं बेटा।
1: दादू, वैसे यहाँ कौन कौन से पद होते हैं?
2: कुछ ही पद मुख्य रूप से होते हैं बेटा, जैसे कि ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोबेशनरी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विशेषज्ञ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीशियन, डिप्लोमा इंजीनियर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, परियोजना प्रबंधक, ये सब होते हैं बेटा।
1: मतलब पढ़ाई के अनुसार अलग अलग अवसर मिल सकते हैं।
2: बिल्कुल मिल सकते हैं।
1: दादू, फिर यदि कोई छात्र अभी स्कूल में पढ़ रहा हो तो उसे किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए?
2: सबसे पहले गणित और विज्ञान की नींव मजबूत होनी चाहिए।
1: इसका कोई खास कारण है दादाजी?
2: क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों की जड़ गणित और विज्ञान ही है बेटा।
1: और आगे?
2: यदि कोई BEL में तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या संबंधित विषयों में अध्ययन करना चाहिए।
1: तो क्या केवल इंजीनियरिंग करने वाले ही BEL में जा सकते हैं?
2: नहीं, वित्त प्रबंधन, मानव संसाधन, कानून और प्रशासन से जुड़े पदों के लिए अन्य शैक्षणिक योग्यताएं भी मान्य होती हैं बेटा।
1: दादाजी, क्या BEL में भर्ती मुश्किल से होती है?
2: नहीं, बहुत कठिन भी नहीं होती। भर्ती के लिए BEL समय समय पर विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी करती है बेटा।
1: फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है?
2: उम्मीदवारों को आवेदन करना होता है। कई पदों के लिए लिखित परीक्षा होती है, कुछ पदों के लिए गेट जैसी परीक्षाओं के अंकों को भी महत्व दिया जाता है।
1: और फिर उसके बाद?
2: फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। उम्मीदवार के ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता और तकनीकी समझ का मूल्यांकन किया जाता है।
1: इसका मतलब ये है कि केवल डिग्री होना ही काफी नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, व्यावहारिक ज्ञान, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कौशल जरूरी होता है।
1: दादू, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
2: बेटा, आज के समय में केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है।
1: सो तो है दादू।
2: विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की भी खासी जरूरत होती है, जैसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, प्रोग्रामिंग की मूलभूत समझ, संचार कौशल, टीम वर्क की समझ होना, समस्या समाधान में दक्षता होना चाहिए, तार्किक सोच होनी चाहिए, नई नई तकनीकें सीखने की आदत के साथ उसे इन सब विषयों के बारे में जिज्ञासु भी होना चाहिए।
1: मतलब दादू, पढ़ाई और कौशल दोनों जरूरी है।
2: बिल्कुल जरूरी है बेटा।
1: पर दादू, अब मुझे थोड़ा ना डर लग रहा है।
2: अच्छा?
1: ये सब सुनकर इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ बस बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही पहुँच सकते होंगे।
2: नहीं बिटिया, प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा।
1: ये तो सही कहा आपने। लेकिन दादू, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है ना, क्या भविष्य में भी BEL जैसी संस्थाओं की आवश्यकता उस समय भी रहेगी?
2: पहले से भी अधिक होगी बिटिया।
1: अच्छा,
2: आज दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या कहते हो तुम लोग, AI, AI, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स और क्वांटम संचार की ओर बढ़ रही है बेटा।
1: इसका मतलब कि BEL भी इन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है।
2: हाँ, आधुनिक रक्षा तकनीकों में इनका महत्व लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आने वाले वर्षों में तकनीकी ज्ञान रखने वाले युवाओं के लिए अनेक अवसर होंगे।
1: दादू, BEL की कहानी से विद्यार्थियों को सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
2: तीन बातें हैं रुचि, जिनका ध्यान हर एक पढ़ने वाले बच्चे को रखना चाहिए।
1: अच्छा।
2: पहला, आत्मनिर्भर बनो। दूसरी बात कि विज्ञान और तकनीक को अपनाओ, उसे समझो, उसे जानो। तीसरी बात, अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए करो।
1: यानी पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए भी होना चाहिए दादाजी।
2: हाँ बेटा, ये बात समझदार है मेरी पढ़ाकू बिटिया। बिल्कुल सही समझा बेटा तुमने। जब कोई वैज्ञानिक नया रडार बनाता है, कोई इंजीनियर नई प्रणाली विकसित करता है, या कोई शोधकर्ता नई तकनीक खोजता है, तब वो केवल अपना करियर नहीं बना रहा होता बेटा,
1: बल्कि वो देश को भी मजबूत बना रहा होता है दादाजी। और बड़े राष्ट्र केवल सैनिकों की बहादुरी से नहीं बनते, उनके पीछे वैज्ञानिकों की बुद्धि, इंजीनियरों की मेहनत, तकनीशियनों का कौशल और विद्यार्थियों के सपने होते हैं। सही कहा ना मैंने दादाजी?
2: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देता हूँ बेटा मैं तुमको।
1: अच्छा।
2: देखो बेटा, BEL जैसे संस्थान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और राष्ट्र निर्माता बनेगा।
1: अच्छा दादू, एक और सवाल है। क्या BEL केवल सेना के लिए काम करती है?
2: नहीं बिटिया, BEL का योगदान आम नागरिकों के जीवन में भी दिखाई देता है।
1: वो भला कैसे?
2: क्या तुमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी AVM का नाम सुना है?
1: वो तो चुनाव में उपयोग होती है ना?
2: हाँ, इन मशीनों के निर्माण में BEL की महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा।
1: मतलब लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी BEL का बड़ा योगदान है।
2: बिल्कुल है। इसके अलावा BEL ने सौर ऊर्जा चलित ट्रैफिक सिग्नल, सेटअप बॉक्स और कम लागत वाला टैबलेट भी बनाया था, जिसका उपयोग जनगणना के दौरान किया गया बेटा।
1: वाह दादू, BEL तो रक्षा और विकास दोनों में योगदान देती है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: क्या BEL अन्य कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करती है?
2: हाँ हाँ, इसे संयुक्त तो उपक्रम कहा जाता है बेटा।
1: तो फिर इसका कोई उदाहरण बताइए ना दादाजी।
2: देखो बेटा,
1: क्षेत्र से बाहर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी योगदान।
2: हाँ, यही तो बता रहा हूँ बेटा। एक अन्य संयुक्त उपक्रम ब्रिटेन की मल्टीटोन कंपनी के साथ भी स्थापित किया गया।
1: उसमें BEL का क्या योगदान था?
2: उसमें बेटा BEL उन्नत मोबाइल संचार उपकरण और डिजिटल संचार प्रणालियाँ विकसित करता है।
1: अच्छा, क्या BEL के सामने कभी कठिन समय भी आया दादाजी?
2: हाँ बेटा, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तब कुछ देशों ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे।
1: फिर क्या हुआ?
2: फिर विदेशी तकनीक और उपकरण प्राप्त करना कठिन हो गया।
1: दादू, ये तो बड़ी समस्या रही होगी।
2: हाँ बेटा, लेकिन BEL के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का संकल्प ले लिया।
1: यानी संकट अवसर बन गया।
2: हाँ, यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी बेटा।
1: दादाजी, आज आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हर जगह होती है। आप ये बताइए, BEL इसमें कैसी योगदान देती है?
2: हाँ बेटा, जब देश स्वयं अपने रक्षा उपकरण और तकनीक विकसित करता है तो विदेशी निर्भरता कम होती है। तो ये आत्मनिर्भर बनना ही तो हुआ ना।
1: यानी देश का धन भी बचता है और तकनीक भी देश में ही विकसित होती है।
2: हाँ, इससे रोजगार बढ़ता है, अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होती है।
1: दादू, क्या BEL समाज के लिए भी कुछ करती है?
2: हाँ बेटा, BEL केवल उत्पादन नहीं करती बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: वो भला कैसे?
2: देखो, विद्यालयों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संस्थाओं को सहायता भी प्रदान करती है।
1: दादू, ये तो बहुत प्रेरणादायक है।
2: हाँ बेटा, सच्ची प्रगति वही है जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो।
1: और हमारा पर्यावरण?
2: BEL पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके कारखानों को शून्य प्रदूषण उद्योग माना गया है बेटा।
1: शून्य प्रदूषण उद्योग?
2: हाँ, यानी ऐसे उद्योग जहाँ जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है।
1: और सौर ऊर्जा वाले ट्रैफिक सिग्नल्स?
2: वो भी इसी सोच का हिस्सा है, ऊर्जा बचाओ, पर्यावरण बचाओ।
1: दादू, आज मुझे समझ में आया कि BEL केवल एक कंपनी नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, तकनीकी प्रगति, लोकतंत्र, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण की मजबूत आधारशिला है।
2: बिल्कुल बिटिया, BEL उसे देखने, समझने और सुरक्षित रखने की तकनीकी शक्ति प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना ऐसे ही संस्थानों के प्रयासों से साकार हो रहा है बिटिया।
1: सही कहा दादाजी आपने।
3: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केवल एक औद्योगिक संस्था नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। तकनीक, सुरक्षा, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण, हर क्षेत्र में इसका योगदान प्रेरणादायक है। तो इसी संदेश के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा।
4: नमस्कार
3: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, वाचन स्वर था भगवती सक्सेना,
2: दीपक नेमा,
3: लेखन था स्वाति गिरी का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

देश के संस्थान। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं, आप सभी को तारीख और इतिहास का नमस्कार।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सबके लिए मैं तारीख और मेरे मित्र इतिहास लेकर आए हैं आजाद हिंद के स्वतंत्रता संग्राम की कथाओं में से एक नया पात्र, जिनका नाम है महेंद्रनाथ डे।
1: महेंद्रनाथ डे के साथ ही साथ आज हम अपने श्रोताओं के लिए भारत के इतिहास में विद्रोहों पर भी नजर डालेंगे, बातचीत करेंगे।
2: बिल्कुल, इतिहास। देश के करीब करीब हर राज्य में जनजातियों की कुछ ना कुछ आबादी है,
1: पर इससे भी पहले ये बात जानने योग्य है कि इतिहासकारों द्वारा भौगोलिक क्षेत्र नस्ल और भाषा के हिसाब से बांटा गया है।
2: भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से हिमालयी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम भारत का क्षेत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्रों में इन्हें बांटा गया है।
1: और नस्ल के आधार पर देखें तो उनका वर्गीकरण तीन हिस्सों में किया गया है। पहला प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, जिसमें मुंडा, ओराव, हो, गोंड और खोंड आदि आते हैं। दूसरा मंगोलाइट, जिसमें हिमालयी, खासकर उत्तरी हिमालयी आदिवासी आते हैं। और तीसरा भाषा पर आधारित वर्गीकरण।
2: भाषा के आधार पर का जो वर्गीकरण है उसमें पहला ऑस्ट्रो एशियाई परिवार है, जिनमें खासी, निकोबारी, संथाली, खरवारी, खरिया, गदबा आदि नाम आते हैं। दूसरा वर्गीकरण है तिब्बती चीनी परिवारों का, जिसमें खमती, स्वांगली, चंबा, लाहौली, लेपचा, हुस्सो, अबोर, सेमा, रेंगमा, नागा, कच्चा नागा, काबुई नागा, सिंगफो आदि आते हैं। और तीसरा है द्राविड़ी परिवार, जिनमें कोरबा, येरुकला, टोडा, कोटा, कुरुख, ओराव, माल्टोया, मालेर आदि आते हैं। और आखिरी और चौथा है भारोपीय परिवार, जिनमें हजोंग, भील आदि आते हैं।
1: जानती हो तारीख की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी और धैर्यवान होती हैं।
2: इतिहास में महिलाएं तो सभी गुणी होती हैं।
1: हम अपनी बात से भटक न जाएं।
2: इतिहास में आपकी ही बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि असल में सचमुच की महिलाएं पुरुषों से कहीं अधिक काम करती हैं। पर हम बात कर रहे थे विद्रोहों की, तो आप बात को आगे बढ़ाएं। इतिहास
1: जरूर तारीख, पर इस गीत के बाद।

0: तारीख में अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि मध्यकाल के पहले तक जनजातियां स्वायत्तता का उपयोग कर रही थीं। हालांकि मुगल शासन के समय जनजातियां रियासतों के रद्द होने के बावजूद उनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन प्रणाली पर कम से कम हस्तक्षेप हुआ,
1: परंतु ब्रिटिशों के समय तो हालात ऐसे हो गए थे, पूरी जीवन प्रणाली को तहस नहस कर रहे थे।
0: 18वीं सदी खत्म होते होते यानी लगभग 37 साल के भीतर करीब 10 से ज्यादा बड़े और लंबे चलने वाले जनजातीय द्रोह ब्रिटिशों के खिलाफ हुए।
1: इन विद्रोहों के कुछ प्रमुख कारण रहे जो हमें इतिहास के पन्नों को पलटने पर साफ नजर आते हैं, जैसे कि एक तो बहुत बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में राजनीतिक बदलाव हुए जिससे लोगों का विस्थापन हुआ और उनकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता खत्म हुई।
0: और तारीख जाहिर है कि इस बदलाव के चलते नए नियम, नए कानून, नए राजस्व लागू हुए होंगे।
1: हाँ इतिहास, राजस्व तो बहुत बढ़ गया था और इन सभी बातों ने आर्थिक हालातों को और भी बिगाड़ दिया।

0: तारीख 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए विद्रोहों की विशेषता ये थी कि इन विद्रोहों का नेतृत्व पारंपरिक तत्वों ने, जैसे अपदस्थ स्थानीय सरदारों, जमींदारों और धार्मिक पंथों ने किया। लेकिन 19वीं सदी के विद्रोह समाज के निचले वर्गों से उत्पन्न हुए। इन विद्रोहों में हिंसा और युद्ध प्रियता भी साफ झलकती है।
1: इतिहास, बहुत सारे इतिहासकारों के लेखन पढ़कर हम कह सकते हैं कि कुछ ही विद्रोहों का स्वर पुनरुत्थानवादी भी था, और उससे प्रकट होता था कि किस प्रकार किसान एक अलग और बेहतर दुनिया के लिए लालायित थे।
0: बिल्कुल, वे अपने नेताओं के प्रति निष्ठावान रहे जो हमेशा उनके ही समुदाय के थे, और एक नई सामाजिक व्यवस्था का वादा कर रहे थे।
1: जो हमेशा ही शेष समाज से अलग अल्हड़ वातावरण में रहते थे, उन्हें ब्रिटिश शासन ने जबरदस्ती औपनिवेशिक घेरे में खींच लिया था।
0: तारीख, मुझे लगता है हम इस विषय को आगे जारी रखेंगे, पर अभी हमें क्रांतिकारी महेंद्रनाथ डे के बारे में भी अपने श्रोताओं को बताना है।
1: जरूर इतिहास, महेंद्रनाथ जी की कहानी हम जरूर सुनाएंगे श्रोताओं को, पर पहले हम सुनेंगे ये बढ़िया सा गीत।